0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। सोना चाहिदा
1: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ। रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर गीत गुराया ते योगराज सिंह
4: डे ऑफ स्लेवरी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिन विच ही सोल्ड आउट हो चुका है, हुण दूजा शो 19 अगस्त नू रोड लेवर एरिना विच। ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लाई विजिट करो livenation.com.au। गीता दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026।
4: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: बलजीत, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਚਲੀਏ
2: ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀ ਨੋਂਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
1: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀ ਨੋਂਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ, 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੈਂਡੀ ਨੋਂਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: कराच स्टार चलाई नू।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332852 04332 4

छड़े छड़े ना समझो लोको छड़े बड़े गुणकारी ओ छड़े छड़े ना समझो लोको छड़े बड़े गुणकारी।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू
1: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो
0: फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने बंसल लॉयर्स तो हाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set.
2: ओपाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
5: हां जी रेडियो

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: डे ऑफ स्लेवरी।

0: मस्त चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: टेंशन निरी टेंशन
2: की होया,
1: इथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा है
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, Brand New Demo ते Quality Pre-owned Vehicles, Trade-in अते Finance Options भी Available. आओ ते अपनी नवी Ford दा Test Drive करो, Business Fleet लाई गल करो, Vehicle Experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी Free Service. Chadston Ford, Ready, set, Ford.
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
4: हुन टेंशन छड़ो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
3: फिर लवाइए कित्थों
4: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-01-246 ते

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ
0: .com। जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रोगने नाविच।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडेनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: हांजी रेडियो।
3: पंजाब दी धरती गुरुआं ते पीरां दी धरती है, योधियां ते सूरबीरां दी धरती है। पंजाब दे गीतां दे बोल ते पंजाब दे ढोल ते सारी दुनिया नचदी है। पंजाब दियां सिफतां सरबजीत चीमा

0: हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: कराच स्तरा चलाइनु
1: मोबाइल स्पीड कैमरों के लिए बाएं मुड़े, पुलिस मोटरसाइकिल यूनिट के लिए दाएं मुड़े, जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
2: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं चाहे थोड़ा सा भी तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
3: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशन.com.au ते जाओ। थोड़ा कोई हल करिए।
4: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
5: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए किथों?
5: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते

0: अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
1: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 थे। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com .au।
0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
3: Yep.
4: Siddhu Moosewala.
3: Intense. You're very

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तो अड्डे नाल।
4: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
5: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
7: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
8: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वर्यां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock। अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
9: हाँ जी हाँ जी।

0: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी
1: रेडियो हांजी 1674 आस करदे हां दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा। समा चुका अज दी कहानी दा अज दे विचार दा। कहिंदे ने एक वारी एक बंदा नदी वल नूं भज्जा जावे काली काली दे विच भजे जाते ने नदी छाल मारती जिहड़ी थां ते छाल मारी पानी भी बहुत डूंगा पिछे एक भला बंदा तुरया आंदा सी कंडे ते खलो के वेखण लग पिया लगते रहा ही कि इन्हें अपनी जान देने दे लई छाल मारी। कुछ पल इंतजार किया पर हुण ओह मदद दे लई आवाजा मारन लगा उहदा हथ दस रहा उहदा चेहरा दस रहा कि हुण उहदा दम घुट रहा। इस भले बंदे ने छाल मारी तैरना आउंदा सी कढ के बाहर किनारे ते लै आया उहदी मदद कीती। थोड़ी देर बाद थोड़ा जिहा पैरां सिर होया ते पुछया भलिया तू अपनी जान क्यों गवाउण दे उत्ते तुलिया। कुछ देर दे लई चुप रहण तों बाद कहिंदा वैसे तुहानूं मैनूं बचाउणा नहीं सी चाहीदा। ते उस बंदे ने हस के कहा मैं नहीं सी बचा रहा मैं उन्नी देर तक तैनूं नहीं बचाया जिन्नी देर तक तू मैनूं मदद दे लई पुकारिया नहीं। तू पुकारिया ते मैं ना जांदा फिर मेरे धर्म के खिलाफ सी मेरा इंसानियत का धर्म ये कहिंदा सी कोई मदद कर रहा मदद दे लई पुकार रहा तो मैं मदद जरूर करा। वैसे मेरे सवाल का तू जवाब नहीं दिता क्यों मर रहा सी क्यों जिंदगी गवानी चाहना इस जिंदगी दे विच रखे की है। कहन लगा घर दे विच बहुत झगड़ा रहिंदा ये अज तो नहीं है पिछले 2 सालों तो मैं यह कुछ घर दे विच वेंदा आया बाहरों मैं कमाई करके जाना

0: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर चलिए।
1: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
0: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिनां विच ही सोल्ड आउट हो चुका है। हुण दूजा शो 19 अगस्त नूं रोड लेवर एरिना विच। ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लई विजिट करो livenation.com.au। गीतां दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026।

कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाय बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते डेली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042 रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंटिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड

0: ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी मम्मी को कहना पड़ा कि मैं उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें ना कहना सबसे खराब सजा है। काश इस सब की बजाय मैंने उस दिन ड्रिंक लेने से मना कर दिया होता। जिम्मेदारी से रहें। अगर आपने शराब पी है तो ड्राइव नहीं करें। TAC से एक संदेश।
1: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
2: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया, योगराज सिंह।

0: कराच स्टारंज लाइनो।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो immigration.com.au।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: हाँ जी हाँ जी।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुण इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
3: ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਬੇਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ
4: ਫਿਰ ਲਵਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ
3: ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ
4: ਅੱਜ ਹੀ ਸਨ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 0406-021-246 ਤੇ
5: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
6: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: Ready, set, go! Chadston Ford. Dandenong Road te tuhanu udik rahe hai. Ford Ranger. Ranger Super Duty. Everest te Sadabahar Mustang. Brand new demo te quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options be available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford. Ready, set, Ford.

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
2: ते। ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
4: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499 2535 45।
5: हाँ जी,

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: मोबाइल स्पीड कैमरा ले खब्बे मुड़ो। पुलिस मोटरबाइक यूनिट ले सज्जे मुड़ो। जानलेवा खतरनाक हादसे ले सिद्धे जाओ।
2: तो आड़ियां शूटिंग दा अंत तो आड़े हाथ विच है। जेकर तुसी थोड़ी जे भी तेज गड्डी चलाउंदे हो तां इह गलत फैसला है। TAC वल्लों एक सुनेहा।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, Radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set.
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
5: हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।
4: सवेरे शामी पाला हो जांदा आजकल, आ स्वेटर बुनिया पिया सी, तू ले जा।
5: ओ ना ना, मेरी भाभी बुनी जांदी बड़ा सोना।
4: भाभी तेरी ने बुनती ज्यादा ही बारीक पाली लगदी है मोदी मारी ने, जिन्ना चिर ओ नहीं पूरा हुंदा ओना चिर आ पाले।

इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्त लागू।

0: जरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील, स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान, बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए किथों?
4: सन करंट वालिया कोलो, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।
2: हां

0: वे दादे मंगौनिया अमलिया झाकना टेढ़ा टेढ़ा अतिले वाली जुत्ती नाली झाड़ दूं।
1: ओहो, तेरा कोई कसूर ना नारे।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: कॉर्पोरेट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते
1: 04-33-280-2528 रेडीमेड गोल्ड डायमंड सिल्वर ज्वेलरी आप बनवा सकते हैं कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45 ते

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

जे को मन जाने मन कोई, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल भवन की शुद्ध, मनै मोचोटा ने खा, मनै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते

केतिया दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने

ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लोय, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार, कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

लानकान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्री धर्म सर्वा बरनाडिये अंडंड बांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश।

कर्तंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग्रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदा में गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे शुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपट चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वगवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईश है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन संतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अग्रताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अग्रताकृता है तरनी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

गुजत गुण गजान के सुंदर हंस दह हज राज हजारे पोत भविख भवान के पोत कौन गुने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक करति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरन दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बस।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाच दिशा में कहूं पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास न वरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सभी ते रहत निरा

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर

जैसी अगन उदम है तैसी वार माया, माया अगन सब को जई करता खेल लचाया, जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया, कह नानक

0: हम प्रेम बंधन तुम बाधे।
1: पावन शब्द जो आप जी ने हुक्मनामा साहब दे रूप श्रवण किया है, ये श्रोमणी भगत भगत रविदास साहबान जी उन्हां दी रसना तो उच्चारण किया होया शब्द तनासरी राग दे उस वाहिगुरु सोठ राग दे विच सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंक 658 ते सुशोभित है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा भगत रविदास साहबान जी सानू परमेश्वर वाहिगुरु दे सानमुख अरजोई बेनती करन दी जुगती दसते हैं, क्योंकि आम तौर ते जिहड़े रब दे प्यारे भगत संत महापुरख हुंदे हन उन्हां दे मन दी अवस्था इहो जी हुंदी है जिवें इक छोटा बच्चा अपने माता दे नाल अपने पिता दे नाल अपनियां मन दियां गल्लां करदा ना, ते मां बाप अपने बच्चियां दे गल्लबात नूं बड़े ध्यान नाल सुणदे हन, ते रब दे प्यारे भगत जन जिहड़े हुंदे ने उहनां दा प्रेम भी इसे तरह सच्चे परमेश्वर वाहिगुरु नाल पिया जांदा है। ते उह कोई इक बालक बन के ते प्रभु परमात्मा दे चरणा च प्रेम विच भिज के अरदासां करदे ने। इक आपां शब्द पढ़दे हां, जदों आपां सुखनी साहिब दी पावन बाणी पढ़दे हां उदों भी इह शब्द अरदास दे रूप च पढ़दे हां, गुरु घरां च अरदास कीती जांदी है उदों भी इह अरदास च पहलां इह भाई साहिब जी शब्द पढ़दे हन, तूं ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। फिर साहब जी कहंदे ने सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आग्याकारी, तुमरी गातमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सतगुरु जी ने सानू गुरबाणी च वार वार यही जुगती सिखाई है कि सिखा ते किवें अपने गुरु दे चरणा च प्रभु दे चरणा च अरदास करनी है, ते प्रभु परमात्मा ने फिर ते प्रसन्न चित होके तेरी अरदास बेनती प्रवान कर लैनी। जिस भगत रविदास साहबान जी दे अज आपां शब्द दी विचार करन हित कत्तर होए हां, इह जदों आपां इहनां दा जीवन पढ़दे हां, दो भगत ऐसे ने, इक भगत कबीर साहबान जी भगत रविदास साहबान जी जिन्हां दा जन्म कांशी दी धरती ते बनारस दी धरती ते होया, ते बनारस जिहड़ा पांडियां दा गढ़ है उन्हां समयां दे विच आम तौर ते मनुख नूं मनू सिमरती मुताबक वर्ण बंड च वंडिया होया सी, ब्राह्मण खत्तरी बैस ते शूदर। जिहड़ा शूदर सी, शूदर दी हालत बड़ी तरसयोग सी, हालात इहो जे सन, शूदर दा किसे उत्ते परछावा पै जांदा सी ना उच जाति वाले दे, ते उदों इह गंगा दे जल नाल इशनान करदे सन, अपने आप नूं पवित्र मानदे असी वड्डे हां, ते इन्हां दा भरम गढ़ तोड़न वास्ते परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु ने उसे ही बनारस दी धरती ते अपने दो भगत ऐसे पैदा किए जिन्हां नूं आपां गुरबाणी च सूरमे भी आख सकते। एक सूरमा हुंदा है जिन्हूं सतगुरु कहिंदे सूरा सो पहचानी है, जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, क कबहू न छाड़ै खेत रण तत्ते मैदान दे विच दुश्मन न मुकाबला करे अपने शरीर दे टुकड़े टुकड़े करा लवे पर रण तत्ता मैदान न छड़े शहादत दा जाम पी लवे। एक सूरमा ओ है जिनू गुरबाणी च सतगुरु कहंदे ने जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिन है सगल बस तांका जाका सतगुर पूरा। पंजवे बादशाह महाराज दे बचन ने कि जिन्होंने अपने मन नू परमात्मा दे नाम रंग च रंग लिया भाव जिन्हां नू नाम दा रंग लग गया असल विच ओ सूरमा है ते परमेश्वर वाहिगुरु ने इन्हां दा भरम तोड़ का भरमगढ़ तोड़न वास्ते दो अपने प्यारे भगत बाबा रविदास भगत रविदास साहबान जी भगत कबीर साहबान जी नीवियां जातां दे जिन्हां दा जन्म होया ते उन्होंने ऐसी परमेश्वर दी प्रेमा भगती कीती ते परमेश्वर दी भगती करके उन्होंने परमेश्वर नू अपने वस विच कर लिया। जिवें इन्होंने अपनी जात बरादरी दा कोला नहीं रखना कीता। जदों आपां बाबा कबीर साहबान दे बचन पढ़दे हां कबीर साहबान जी कहिंदे ने कबीर मेरी जात कहो सब को हसनै हार बलिहारी इस जात को जिह जपियो सिरजनहार। फिर कहिंदे ने जात जलाहा मत का धीर सहज सहज गुण रमै कबीर। किन्ने बचन आउंदे ने ओ कबीर परमेश्वर दी बंदगी करके ऐसी परम गति नू प्राप्त कर गया एडा उच्चा बन गया जिदी गिणती आप भगत जी ने अपनी बाणी दसना कीता है। कहिंदे ने अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछानी। कहिंदे हुण राम ते कबीर एक हो गए कोई पछाण नहीं सकदा। किहो जी वस्ता बन गई जिवें समुंदर है समुंदर दे विच नदियां दरियावां दा जल मिल जावे जिवें अपने पंजाब दीयां नदियां ने जमुना नदी सतलुज दरिया ब्यासा दरिया होर जिन्नियां गुरावी इत्यादिक ए मानो ए नदियां बग रहीयां ने बगदियां होए नदियां इन्हां दा पानी आपां कल्ली कल्ली नदी चो लैके समुंदर विच मिला दईए ते ए आखीए कि समुंदर विचों आपां जिहड़ा पानी जमुना दा पाया जां आपां पानी सतलुज दा पाया ब्यासा दा पाया है उही पानी विचों कढ़णा है कि ओ पानी निकल सकदा है नहीं निकल सकदा। इसे तरह गुरु सवारियो जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने जदों परमेश्वर दे गुण गाउंदे परमेश्वर नाल प्रेमा भगती करदे ने ना उस प्रभु विच ऐसे अभेद हो जांदे लीन हो जांदे हन उहनां दे विच फिर परमेश्वर विच किसे प्रकार दा कोई फर्क नहीं रहिंदा है। जिहनूं साहिब जी ने अपनी गुरबाणी च बचन कीते ने आपां कलगी धर पातशाह दे बचन पढ़दे हां ते सतगुरु कहिंदे ने हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाए। इहो जी अवस्था बन जांदी है। इस करके गुरु सवारियो जिहड़े नाम जपण वाले महापुरख रब दे प्यारे ते बाबा कबीर साहबान जी ओ इस अवस्था तक पहुंच गए परमेश्वर दा स्वरूप बन गए। भगत रविदास जी ने परमेश्वर नू प्राप्त कीता इहो जी अवस्था बन गई प्रेम विच भिज के परमेश्वर दे सानमुख होके आखण लगे पढ़ो श्री राग दा पहला शब्द भगत जी दा तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हंता। प्रेम विच भिज के परमेश्वर वाहिगुरु नू कह रहे कहंदे परमात्मा जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हंता। कहिंदे तैनू आख्या जांदा है कि तू पापियां नू पवित्र करन वाला, पापियां नू पवित्र करन वाला। पर कहिंदे जे असी कलजुगी जीव पाप नहीं करदे परमेश्वर, फिर तेरा पापियां नू पवित्र करन वाला नाम किवें पैणा सी। नाम तेरा तां पे जे असी कलजुगी जीवन ने पाप कीते, पाप कीते, पर जिहड़े आपां पाप कीते हन तेरा मुंड कदीमा तो सुभा है। जदों जीव पाप कर्म करदा, जिवें एक मां अपने बच्चे दे कीते हुए गुनाहां नू बख्श दिंदी है, इसे तरह परमेश्वर दा परमेश्वर वाहिगुरु अपने प्यारियां दे गुनाहां नू बख्श दिंदा है। बस उहदे चरणां च बेनती करनी चाहीदी है, सानू बेनती करन दी जुगती आनी चाहीदी है। सभगत जी दे बचन हन, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रा मैया हों बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। किन्ने वचन आउंदे ने ते गुरु सवारियो, सतगुरु दे वचन पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने, गुरु पातशाह दे चरणा च आके बेनती करो कि हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे, मान करो तुद उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। अरदास है गुरु सवारियो। शब्द राही सतगुरु जी ने एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी पढ़ो। जेडे गुरमुख प्यारे सहज पाठ करते बाणी दे, जेडे जानते हैं उन्हें पता है इस शब्द विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच मोती हन, माणक हन, जवाहर हन। जपजी साहिब दी पावन बाणी पढ़ दीए ते साहब जी कहिंदे ने, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गल तां गुरु दी सिक्ख्या सुनन दी है ना, आपां गुरु दी सिक्ख्या सुनदे जरूर हां, पर माफ करना एक कान राही सुनदे दूजे कान राही बाहर कढ दिंदे आ। गुरु घर दे अंदर बैठे आ, दीवान हाल दे अंदर बैठे आ, रामदास पातशाह महाराज के पावन अस्थान ते कीर्तन हो रहा, शब्द सुनदे आ, पर कर्मां चो बाहर निकल आए ते सानू गुरु दा शब्द भुल जांदा है, सानू गुरु दी विचार भुल जांदी है। ये कारण की है कि आपां सुनदे जरूर हां पर गुरु दे बचना उत्ते पहरा नहीं दे रहे हां। भाई साहब भाई गुरदास जी दा एक बचन चेते आ गया। भाई साहब जी कहिंदे ने, पूछक पृथक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन कै जाइए, पूछत बैद खात न औखद संजम सह, कैसे मेटै रोग सुख सहज समाइय, पूछत सुहागण कर्म है, पूछत दुहागण कर्म है सुहागण के, हृदय बेविचार कत सेजै बुलाइए। कहिंदे इसे तरह कहन लगे भाई साहब जी ने, कहिंदे आख गाए सुने आख मीट पाई है ना परम पद, गुर उपदेश गह जोलू ना कमाई है। सारी विचार दा सिट्टा भाई साहब ने अखीर दियां पंक्तियां कढ़ दिता। कहिंदे पुछदा जरूर है रब दे प्यारियां नू, रस्सियां नू आके पुछदा कि गुरु नू मिलण दा परमेश्वर नू मिलदा मार्ग की है, रस्ता की है। अगो गुरमुख प्यारा दसदा कि भाई इको ही एक तरीका है, वो है कल केवल नाम आधार। इको एक तरीका है वो केड़ा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बोरानंग। पर हुंदा की है कि जदों ये सुनदा है, सुनता लैंदा, पर जड़ा मार्ग तत वेते साडे गुरु साहिबाना ने भगत साहिबान सानू मार्ग दसिया है, उस मार्ग उत्ते अपना रस्ता नहीं, उस कदम नहीं रखता गुरु सवार। गुरु नानक साहब ने सानू दस दिता आरंभता च कि सिखी का मार्ग की है। कहिंदे जोतो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये सतगुरु महाराज के बचन ने, सिर दीजै कान ना कीजै। आपां सिर दिंदे हां जदों पंज प्यारे अमर छकाउंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच पंज प्यारे अमर छकाउंदे ने, ਤੇ ਸੀਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ। ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ, ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਤ ਬੈਦ ਖਾਤ ਨਾ ਔਖਦ ਸੰਜਮ ਸਹਿ, ਕੈਸੇ ਮਿਟਾ ਰੋਗ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਵੈਦ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵੈਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ, ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਆਹ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਖਾਤ ਨਾ ਔਖਤ ਸੰਜਮ ਸਹਿ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਕੇ। ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁੱਟੜੇ ਇਸਤਰੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬਿਵਚਾਰਨ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਬਿਵਚਾਰ ਕਤ ਸੇਜੈ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਭਚਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਸੁਣੈ ਆਖੈ ਮੀਟੈ, ਪਾਈਐ ਨਾ ਪਰਮ ਪਾਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਐ। ਗਾ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿੰਬਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਟੀ ਕੱਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਹ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਬਸ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहे गुरु ए शब्द दी धुनी दे दीदार तैनू हुंदे होण ए है जद इस तरह जपेगा फिर तेरे नेत्र बंद कीते हुए सफले ने पर जे तेरे अंदर गुरु सवारियो तू नेत्र बंद करदा लोकां नू गुमराह कौन करन दे लई कहंदे फिर भाई साहब जी कहंदे गाए सुने आख मीटे पाईया न परम पाद गुरु उपदेश गह जो लो ना कमाई है गुरु दे उपदेश गह दा अर्थ है पकड़ना पकड़ना गुरु दे उपदेश नू पकड़ना ते पकड़ के उहदी कमाई करनी जिवें आपां सुन रहे हां आसा दी वार आप जी ने सुनी भाई साहब जी पासों शब्द दी विचार आप जी सुन रहे हन यह गुरु दा उपदेश है जो गुरु रामदास पातशाह ने अपने घरों सानू बख्शिश कीता ते आपां सुन के इन गह दा अर्थ पकड़ना भाव की है अपने हिरदे अंदर बसाना हिरदे अंदर बसा लेना फिर उस समय अवस्था जो हिरदे अंदर बस गया फिर गुरु सवारियो साडी भटकना सारी मुक जाएगी कहिंदे परम पद भी जे प्राप्त करनी है फिर गुरु दे उपदेश की कमाई कर सो दास ने बेनती यह की सी कि गुरु का शब्द आपां सुनदे भी हाँ शब्द नूं पढ़दे भी हाँ शब्द नूं विचारदे भी हाँ पर साडे मना उत्ते असर क्यों नहीं हो रहा कि आपां शब्द नूं पढ़दे सुनदे विचारदे तां है पर शब्द की गल मानदे नहीं हाँ गुरु दी गल मानदे नहीं हन जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़दे हाँ ते सतगुरु कहिंदे ने सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मन नाओ तीन बचन साहब ने कर सुनना सुन के की करना मनना मनिया मनना है फिर मन कीता भाओ जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़ ली आप चार बोड़ियां महाराज कहिंदे ने सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया ईश्वर वर्मा इंद सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया सरा गुणा के गाह ये चार पौड़ियां सुन दियां फिर पातशाह कहते मन्ने की गत कही ना जाए मन्ना सुरत होवे मन बुद्ध मन्ना मार्ग ठाक ना पाए फिर कहते मन्ना पाव है मोख द्वार मुक्ति का दर प्राप्त करे कदों जो तू सुन के तू मन लवेगा गल मन दी है बस गुरु दे उपदेश नू सुन के मन लेना फिर साडा पार उतारा हो जाना है जिस भगत रविदास साहब जी शब्द की विचार करने तो आप कतर हो बाबा रविदास जी ने अपने गुरु की अकाल पुरख की गल मनिया मन के हिरदे अंदर बन लिया फिर वो एक सरूप बन गए उन्हां विच ते रब विच किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया ते इत्थे प्रेम विच भिज के कहिंदे ने

कहों सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। फिर एक बचन आप होर पढ़ते हैं, जैत श्री राग विच पंजे पातशाह महाराज का, ज्यो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै, बूंद बिहूणा चात्रिको क्यों कर तृतावै, नाद करंक है बेतिया सनमुख उठतावै, भवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। एक मैं छोटी जी बेनती कर दिया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार सजिया होया, भाई नंद लाल जी सतगुरां दे 52 कवियां विच मुख कवि हन, सतगुर दे दर ते रह रहे टहल सेवा करदे ने। गुरु रामदास पातशाह वाहिगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह मां हुक्म कीता कि नंद लाल जी तुसी लंगर लाया करो, आईयां गईयां संगतां नूं प्रशादा पाणी छकाणा। इन्ना प्रेम सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराणा करदे सन, सतगुरु ही प्रेम करदे सी। कई बारी मेरे साहब ने अपने महलां चो जाना, विचरते हुए भाई नंद लाल जी कोल पहुंच जाना ते आखना कि नंद लाल सानू प्रशादा छका, भुख लगी है। बड़े प्रेम नाल भाई नंद लाल जी प्रशादा छकांदे। कई बारी इस तरह होया, एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने प्रशादा छकण लई, भाई नंद लाल जी ने थाल परोस के रखिया। कलगीधर पातशाह महाराज सनमुख कहिंदे सामने कूकर आके बह गया, कूकर कुत्ता सामने आके बह गया। कहिंदे कलगीधर पातशाह ने बुरकी तोड़ी, अद्धा प्रशादा बगा के सुटिया, कूकर नूं पा दिता। भाई नंद लाल जी वेख रहे ने, कूकर ने प्रशादा छकिया, शुकराना करदा चलिया गया। कुछ दिन लंघे ने, अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर आए ने। अज भाई नंद लाल जी ने अपने सेवक नूं आख्या, सिखा अज प्रशादा तू गुरु गोबिंद सिंह मनु छकाना है। प्रशादा छकन लई जदों सतगुरु बैठे ने, सिख ने प्रशादा ताल परोसिया। भाई नंद लाल साहब जी पुछते, सतगुरु पुछते कि नंद लाल किथे है, ते अगो सिख कहन लग्या कि पता नहीं किथे गए ने, मैनू आख्या सी कि तुसी अज सतगुरु नूं प्रशादा छकाए, सेवा तुसा ने करनी है। जदों ये बचन कीते, सतगुरु प्रशादा छकन लगे, पहली ग्राही तोड़ी है, वो बुरकी सतगुरु मुख च लजाण लगे, ते साहब दी निगाह पई है कि जिथे कुछ दिन पहला कूकर आके बैठा सी, उस थां ते भाई नंद लाल जी बैठे ने, उस थां ते भाई नंद लाल जी बैठे ने। कलगीधर पातशाह महाराज पुछदे ने, कहन लगे नंद लाल की गल इथे क्यों बैठा है। कहन लग्या सच्चे पातशाह, कल आप जी दे कोल कूकर आया, कूकर इस थान ते बैठा सी, आप जी ने बुरकी पा दी, शीत प्रसाद देना कीता, उह छक के तृप्त हो गया। हे कलगियां वाले पातशाह महाराज, मैं भी नंद लाल आप जी दे दर दा कूकर हां, मैनू भी आप जी शीत प्रसाद देना करो। आप सो गुरु सवारे, यह है गुरु नाल प्रेम। कलगीधर पातशाह महाराज बड़े प्रसन्न होए। भाई नंद लाल दी गजलां आपां पढ़दे आ ना, उहदे च भाई नंद लाल जी इस गल दा जिक्र भी कीता है, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, के लाल सग, सग दा अर्थ कुत्ता, गुरु गोबिंद सिंह गुलाम, गुरु घर दा गुलाम, ना लाल चंद कहिंदे गुरु गोब, गुरु घर दा कूकर है जिन्हूं आपां पढ़दे आं, हम कूकर तेरे दरबार, भोक है आग है बदन पसार। फिर किन्ने बचन आउंदे ने, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तह जाओ। किन्ने बचन सतगुरु जी ने बार बार गुरु ग्रंथ साहिब कीते ने, ते सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश कीती, भाई नंद लाल नूं गल बकड़ी च लै लिया। गुरु कृपा करे, धन गुरु रामदास पातशाह महाराज कृपा करन, साडे अंदर भी भाई नंद लाल जैसी प्रीति बन जावे, ते साडा भी जीवन सफला हो जावेगा। नितनेम आपां सारे करदे आ, सिमरन सारे करदे आ,
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਹਮ ਛੂਟੇ ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਫਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੋਗੇ।

0: परमेश्वर माया दे पति वाहिगुरु जानत हो जिहो जी साडी हालत है जिवें किवें आपां विचर रहे साडे अंदर दी वी बाहर दी वी परमेश्वर जानदा गुरु जानदा होर कोई नहीं जान सकता क्योंकि आम तौर ते साडी जिहड़ी पहुंच है ना मनुख दी पहुंच बंदे दे शरीर तक है आपां एक दूजे दे शरीर वेखदे आ गोरा चिट्टा रंग काला रंग आ चिट्टा रंग नैन नक्श इहो जिहे हन चम देख रहे अंदरली तस्वीर नहीं वेख सकते हैं अंदरली तस्वीर उही वेख सकदा जिहड़ा अंदर तक पहुंचिया होवे अंदर तक पहुंचिया कौन है अंदर तक पहुंचिया परमेश्वर अंदर तक पहुंचिया गुरु ते गुरु साडे अंदर दी जानदा इस करके आख्या गुरबाणी च साहब ने कि बिन बोलिया सब किश जानदा किश आग्या कीचै अरदास बिना बोलिया जानदा उहनूं कहण दी लोड़ नहीं है बस शरदा भावना नाल गुरु वल प्रेम धारण करके तू अपने घरों तुर पै भाई गुरदास जी कहिंदे ना चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है भाई साहब ने वचन कर दिते ने गल तू अपने कदों कदम कदम पुटिया है तेरे कदम विच प्रेम हुए गुरु दे प्रति शरदा होवे गुरु रामदास पातशाह दे घर आ रहा शरदा भावना रख के रस्ते विच गुरबाणी पढ़दा आ सिमरन करदा आ संसारी गल्लां बातां करदा ना आ यह है गुरु वल कदम पुटना नितनेम करदा आ देख गुरु रामदास पातशाह तन किवें नवाजना फिर पर आपां की करदे आ माफ करना गुरु घर रस्ते दा दूर दी गल है कि गुरुद्वारा साहब दे अंदर आके उधर कथा कीर्तन हुंदा है उधर कई बारी अपनियां गल्लां बातां आपां करी जा रहे हैं अपनियां गल्लां बातां ही करी जा रहे हैं कि सानू फिर सतगुर दियां खुशियां मिल जाणियां ने प्रेम आपां करिए जिहड़ा भी गुरबाणी पढ़नी है प्रेम नाल पढ़िए अमृत वेले उठियां हरेक जो भी सानू दात सतगुर तों मिलदी है हरेक दात नूं प्राप्त करके शुकराना करिए सतगुर दा बस साडियां झोलियां भर जाणगियां किसे प्रकार की कमी नहीं रहेगी गुरु रामदास पातशाह महाराज का घर ऐसा जो आपां मंग लवांगे सानू इत्थों मिल जाना गुरु सवारियो ते सतगुरु कहिंदे आप जी जानत हो जैसी तैसी साडे अंदर दी हालत अंदर बाहर दी सारी जानदे हो
1: अब कहां करोगे ऐसी
0: कहिंदे हे परमेश्वर हुण असी इस तरह आप जी कहां करोगे ऐसी किवें करोगे भाव तुसी जे तुसी ना जानदे होण फिर तां असी तुहाडे कोल बेनतियां करिए अरजोई करिए तुसी तां बिन बोलिया सब के जानदे हन साडे मन दी हालत जो साडे मन चल रहा है मन विच की है बाह मुख विच की है ये परमेश्वर वाहिगुरु जानदा गुरु सवारिया ते साडे मुख च कुछ होर हुंदा ते मन च कुछ होर हुंदा है अरदास करदे आ गुरु पाद चरण जां आप करदे जां भाई साहिब जी पासों कराउंदे आ चंगी गल है चाहे आप कर लो चाहे गुरु घर दे ग्रंथी सिंह जी पासों करावो पर तेरा सब तो वड्डी गल है तेरे अंदर शरदा प्रेम होना चाहिदा गुरु साहिब दे चरणा च बेनती करा रहे जां कर रहे यह गल ख्याल रख कि मेरा गुरु हाजर नाजर है ते मैं गुरु दे चरणा च बेनती करदा सतगुरु मेरी अरदास नूं सुनणगे ते सतगुरु सुनदे भी हन पर हुंदा की है ते साडे मन च फुरने पैदा हो जांदे कि अरदास तां कीती है पता नहीं गुरु ने सुननी कि नहीं सुननी है नैगेटिव सोचते आप पॉजिटिव सोचा करिए गुरु पातशाह के चरणा च बेन ये सुन याद रखो अरदास की है ते गुरु साडी बेनती जानदा वो साडे अंदर दी जानदा

मेरा प्रभु है ना वह गरीबा निवाजन वाला है, गुसाइया गुसाइया सारी धरती का मालक परमेशर वाहिगुरु जी आप आखते हैं, वह गुसाई जड़ा है उस परमेशर ने गरीबा निवाजन वाला है। मेरे सिर उत्ते कहिंदे इह छतर धर दिता, जस रूपी छतर जिहड़ा संग जिहड़ा लुकाई च सोभा होण, धन रबदास जी आखण लग गए सारे, जिहनू आपां रोजाना पढ़दे आं कि हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। किन्ने बचन आउंदे ने ते गुरु साहबान जी गरीब नवाज हैं। गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां दे जीवन बाब सारे जान दियो, बचपन विच माता पिता अनाथ हो गए, साथ छड़ गए, माता पिता साथ छड़ गए, गरीब हो गए, ताए चाचे ने खबर सारनी पुछी, गुरु अमरदास पातशाह दी हजूरी विच आए, टहल सेवा कीती, टहल सेवा तो प्रसन्न होके सतगुरु जी ने धन गुरु रामदास पातशाह गुरगद्दी बख्शिश कीती। गुरगद्दी बख्शिश होई जो छत्र सिंघासन उत्ते सतगुरु बैठे, नेत्रां च हंझू डिगण लग पे, बराग विच आ गए ते सतगुरु कहण लगे पुरखा तू गुरु नानक दी गद्दी दा चौथा वारस बनिया है, संगत तेरे वल तक रही है, संगत नूं उपदेश देना करो। ते गुरु रामदास पातशाह नेत्रां जल छलक रहा, लम्मा दाड़ा साहब दा, धन गुरु अमरदास पातशाह मुख करके कहण लगे जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। अज ओ गुरु रामदास पातशाह दा घर जिथे लैना बना के संगतां खलोतियां ने, अमृत वेले कुआड़ खुलदा है ते गुरु रामदास पातशाह घर ते संगतां कहिंदियां ने दर मान दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। ते अंदरो अंदरों कुआड़ खोलदा गुरु सवारियो, कुआड़ अंदरों क्यों खोलदा है कि गुरु रामदास पातशाह किते बाहर नहीं गए, अंदर बैठे ने। आपा किते काम ते जाइए ना बाहर घर नूं जंदरा मारदे, बाहरों ताला लगदा है, इहदा मतलब की है गुरु रामदास पातशाह अंदर ने बैठे हुए, जो संगतां बेनतियां करदियां ने ते सतगुरु फिर सेवक राही अपनी कुंडी खुला दिंदे ने, जिस करके फिर संगतां गुरु पातशाह दर्शन दारे करदियां हन। सो एक कहण दा भाव है, यह है गरीब निवाज गुसाइयां मेरा, मत माथे छतर तले, जिहड़ा जस रूपी छतर सीस उत्ते धरे।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 04-91-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410 500
0: या 90 77 97

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।